0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: सबको तरसाने मोहल्ले में आग लगाने अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।